तेरे को मैं एको चीज मंग दे जदों दर्शनी जोड़ी वड़ो ना जी गुरु रामदास के दर की दर्शनी जोड़ी कहते ने कि तो असं एंटर होंने अकाल तखत के सामने जी जोड़ी इनू दर्शनी जोड़ी तुसी दर्शनी ड्योड़ी तो अंदर हरिमंदर साहब पहुंचने तक कभी गिने 84 कदम बनने कहते वो जेडे 84 कदम ने ना एक एक कदम तेरा प्यार वाला होवे प्यार वाला होवे श्रद्धा वाला होवे प्रेम वाला होवे भावना वाला होवे मन विच गरीबी होवे ते गुरु रामदास जी कहते जिन्ने कदम चल के आया तेरी 84 मैं कटांगा समझना जो सही है सकेत मंडी के राजे ने पंक्ति सुन ली सी लेखना मिटीए सखी जो लिखिया करता ये ते गुरु अर्जन देव ने बैटरी

Satgur Satpurkhang Vinam Karungur Pas Ham Kire Kirma Satgur Saranai Kardayanam Pragat Mere Meet Gurudeva Moka Uramanam Pragat Gurmat Naam Mira Pran Sakhai Har Kirat Hamri Rahras Rao हर जन केवड भाग वडेरे जन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप दास है मिल संगत गुण प्रगास

निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जीवड़ वरना कोई तू जुग जुग एको।

भी अले। मान एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलया राव। ना हो जति सती नहीं पड़े।

पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है।

काल पाई कर विषण पर काशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, भेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताई हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो।

से किसान करो दोष जीते उठ बतोट पाता सकल मलेश करो ऋण खाता जे अस्तुज तब सरणी परे तिनके दोष्ट दुख है वह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके कालो निकट नहीं आए हैं रक्षा हुए ताहि सब काला दोष्ट रेष्ट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हरि हो ताके ताप तनक मोह हरि हो।

जाय कर करते गौर विचार सत्कर गाव सहिला सगळे सजणार तुम गाव मंगल करता सहिला हमारे नतनक भी अड़ संभालिया देखेगा देवनहार तेरे दानों दिन तना पवै तसदा तेरे कवन समाल समत का लिखया मैं कर पाव तेल देव सजना शीसरिया जो वह सर समेल पर करे हो पहुंचा असदरे नत पवन सदनहारा सिमरिया नानक से दे अवन राधा सा महला पहला से कार से गुर से उपदेश गुर गुर एको वे सन एको बाबा जय कर करते तीर्थ होए तो कर रास उड़ाई सोए राव विश्व जसया करियां तह राम सच्ची वारी न हुआ तीर देखो न सुरता ने को नानक करते के देश राग तनासरी महला पहला गगन में काल राव चंद दीप गबाने तारिका मंगल जनक मोती तू कुमा लयान लोक वन जब करे सगल बन राई फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता चंद्रवाय अंत तेरी हाल जय सब नैन नैन नैन को सहस मूर्त मनाई सोई सहस पद विमल नानेक पद गंध बैना सहस सब गंध चलत मोही सब मैं जो ज्योत है सोए जिसका चानन सब मैं चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए जो तिस भाव सवारती होए हर चरण कवल मुकरंद लोभित मनो अनिल मोह आहि प्यासा कृपा जल दे नानक सारिन पावे जाते तेरे नाहि वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो भरिया मिल साधु संदल संधाए पूर्व लिखता लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वडाई कर जंडा उत पुन वडाई राव ताकत हर रसाद न जानिया तिरंतर हम कंडाही ज्यों ज्यों चलें चुभ दुख पावे जमकाल सहें गिर बंडाई हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन मरण पव संडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहुतो सांड जय मंडाई हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा हे जन नानक नाम लाल टेक है हर नाम ही सुख

करगी तरपात का ए हुकुम सुनदा सार तीन मैदान जंगलिश पहुंचे लिए जाके देखा कि ये भाई के नैया जी ने मोड़े की मस्त पाई हुई है ते एक पके हुए मुगल सिपाही दे मुंह नूं भुख लागे अजे उसके मुंह च पानी पौणी लगे है ते सिख ने जाके भाई कन्हैया जी नूं बाहों फड़ लिया। जरा गुस्से दे विच आके कह लगा कि कौन तेरियां एक चुस्त चलाकियां हुण बहुता चलनी चलनियां तेरियां सारियां करतूतां दा पता करगी दा पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं लग चुके खेती कई तेनू गुरु पातशाह ने हुणे याद याद कीता है। भाई कन्हैया जी बड़े प्यार के विचार के हाथ जोड़ के कह लगे तुम भाग मेरे मेनू पातशाह ने बुलाया सिखो मैं हूं चलता हाँ पर मैं थोड़ा दस दो ता जो मैं इस पटे हुए सिपाही के मुंह पानी का पालवा पर सिख जिस तरह गुस्से के आके खड़े वचन कर रहे हैं भाई कन्हैया जी को तो भाई कन्हैया जी जिस तरह हाथ जोड़ के बड़े मिठे के प्यारे वचनों के नाल जवाब दे रहे हैं और सवाल के जवाब जो भाई कन्हैया जी और सिखों के विचकार मैदानी जंग में हो रहे हैं उन्होंने बोलों ढाई दशाब्दी सेवा विच के

एक भाई कने यह दिन कलगी पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पास ले गए ते कहन की लगे महाराज ए आपका सिख नहीं एक गद्दार है एक दुश्मनों में पानी पिलाऊंगे। कलगी पातशाह ने पूछा भाई कन्हैया जी तो कन्हैया जी ए सिख की कह रहे ने तो भाई कन्हैया जी गल विच पल्ला पा के खड़े ने नेत्रां दे विचों जल रह रहे बेनती कर लगे नहीं महाराज मैं किसी दुश्मन नू किसी गैरी नू किसी मोगल या तुर्क नू पानी नहीं पिलाया। कौन सिख कह लगे महाराज ए झूठ बोल रहे असी आप इसनू अपने अखां नाल तक्या मुगलां नू पानी पिलाउंदे आ। पातशाह ने फिर पुछया भाई कन्हैया सिख की कह रहे ने तां भाई कन्हैया जी गल विच पल्ला पा के बेनती कर लगे नहीं महाराज मैं किसी दुश्मन नू पानी नहीं पिलाया। तां सिखा फिर तू किन्नो पानी पिलाउंदा रहे ने। महाराज मैं तुहाडे मूंह विच पानी पाया है जो दिसे सो तेरा रूप आपने तो अपनी लाई बाणी दे विच सानू ए उपदेश दिता सी हिंदू तुरक रात दी मान चाहती मानस की दी जात सब एक भाई कन्हैया जी जिस तरह गल विच पल्ला पा के कलगी पातशाह दे चरणां विच अर्दलियां कर रहे ने उन्होंने बोलों इस तरह बयान किया जा रहा है।

0: सब दल हट के तेरा सब मल्या सब दल हट के तेरा सब
1: दर्शन के तेरा दर्शन के तेरा।

حضرت کبیر صاحب نے اتوں تک آخیا کہ منمک ساکت دے کول بہنا اودے نال گل کرنی اودے نال چکنا چکاونا تے بڑی دور دی گل ہے. منمک نو ویکھ کے تے دوڑی لا دیا کر بھج لیا کر کہ میں کتے دے نیڑے نہ چلیا جاواں. کبیر ساکت سنگ نہ کیجیے دور ہے جائیے بھاگ. بھج لینا چاہیے منمک دے ملن تو پہلا پہلا کیونکہ انہیں اپنے ورگا بنا لینا. ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਂਗੇ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੁੱਕਿਆ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਵੇ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦਣਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝਾਂ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸਹੀ ਹਾਂ ਢੁੰਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸਬਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ. ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਸਕੀਏ. ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਇਆ. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣੇ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ. ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਲੰਖੂ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ. ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਤਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੇ. ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ. ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ. ਅੱਜ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਨਾਜੁਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੜਫੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਬਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ. ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਗਾਣੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ? ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਦਕੀ ਤੇ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸੀ. ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ 22,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, 22,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ. ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ. ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ. ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ.
संगत जी जे मनमुख की संगत में चले गए मनमुख बन जाना, अज बड़ी सूझ बूझ तो कम लेना पड़ेगा। दास अर्ज कर रहे हैं गुरु हरकृष्ण महाराज अठवें पातशाह महाराज सचखंड जान लगे ते दिल्ली दे विच महाराज ने अपने पांच भूतक शरीर का परित्याग किया। चेचक की बीमारी सारे शहर विच फैली हुई सी। चेचक की बीमारी कई लोग इस बीमारी नूं आखणगे माता निकली है। की हो गया? कहिंदे माता आ गई। ते मैं बेनती बहुत बार आप जी के चरणा विच तेज तों कीती है कि मां शब्द बड़ा सत्कारथ शब्द है। माता जिहड़ा शब्द आ ना माता, ये बहुत सत्कार योग शब्द है। बंदा जदों भी कोई सट वजेगी ना, जदों भी कोई तकलीफ होएगी, भावे ब्याह होया होवे, एकदम अंदरों आवाज निकलेगी हाए मां। मां याद आती है दुख के समय, जदों फिर उम्र वड्डी होंदी जाती है फिर मां की थां ते फिर कहन लग जाने रब्बा, हाए रब्बा, रब याद आउण लग जाता। पहला मां फिर रब, जदों भी कदे कोई दुख का समा आएगा मां तो बाद फिर रब। पिता नहीं, बच्चे नहीं, घरवाली का नाम नहीं लेंदा बंदा दुख, मां जा रब। ये बड़े सत्कारथ शब्द ने माता मां। पर गुरमुखो माता शब्द एक भैड़ी बीमारी नू देना, ये माता शब्द की तोहीन है। एक भैड़ी बीमारी तो तुम कहते माता निकली है, इतने माता शब्द की बदनामी है। इस गल मां कदे बच्चे नू दुख देंदी है, जेड़ा ये ऐसी बीमारी है जो आ घेरती है चेचक की बीमारी, उस वेले किन्ना बुरा हाल हो जाता उस मरीज नू। वेखो मां ते अपने बच्चे नू कदे भी तकलीफ नहीं आउण देंदी, मां ते कदे भी अपने बच्चे नू दुखी नहीं होण देंदी। ये नहीं कहना चाहिदा माता, ये बीमारी नू माता शब्द ना दिओ। ये जरूर कह सकने आ भी जदों कदे बीमारी आउंदी आ मां याद करा देंदी आ। इस बीमारी विच मां याद आउंदी आ जरूर, पर इस बीमारी नू असी मां माता ना आखीए। माता कदे भी अपने बच्चे नू दुख नहीं देंदी। गुरमुखो चेचक दी बीमारी सारे दिल्ली विच फैली हुई सी, बड़े लोग मर रहे सन। गुरु हरकृष्ण साहब के कोल कईयां नू लैके आए, महाराज ने बख्शिश की थी, ठीक कर दिते सारे। फिर कहिंदे महाराज रोगी ज्यादा ने, किवें आउणगे कल्ले कल्ले? गुरु हरकृष्ण महाराज कहिंदे आ सेवादारां नू आखिया जाओ जिन्ने बीमार ने सारियां नू बाहर कढ लो, घरां चों बाहर गलियां दे विच लै आओ, असी अज दिल्ली दियां गलियां दे विच खुद चक्कर लावांगे। सब मरीजां नू बाहर कढ लिया गया। धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह अठवें गुरु नानक महाराज कली कली गली दे विच गए ते बाहर बैठे मरीज मारन नू मत्था टेकदे सी। सच्चे पातशाह बख्श करदे ने, सिरां दे उत्ते हथ रख के रोग कट दिंदे ने। मेरा वाहिगुरु गोविंदा हर हर नाम ओ खुद मुख देवै कट है जम की ठंडा। महाराज वाहिगुरु वाहिगुरु कहाउंदे ने, रोग दूर हो जांदा। गुरमुखो नाम विच बड़ियां बरकतां ने, सच्चे पातशाह दी बख्शिश नाल जेड़े नाम कमा लैंदे ने तन ते मन दे रोग उहनां दे दूर हो जांदे ने। तन ते मन दे रोग उहनां नू दुखी नहीं कर सकदे, ओह दुख विच भी दुखी नहीं हुंदे जिन्हां दे पल्ले सिमरन होवे, जिन्हां दे पल्ले बंदगी होवे। नाम दी दवाई आ ते सतसंगत रूपी हस्पताल विच असीं आउंदे आ, गुरुद्वारे जांदे आ। महाराज कृपा करो मेरे मन की टेंशन खत्म कर दियो, मेरे दिमाग की टेंशन खत्म कर दियो, मेरा मन ठीक कर दियो। तन दे रोगां नालों मानसिक रोग मन दे रोग जिहड़े ने ये ज्यादा भयानक ने, ते इत्थे फिर नाम की दवाई मिलती है। हर हर नाम औखत मुख देवै, दवाई मिलती है नाम की। ते गुरमुखो नाम की दवाई नूं परहेज नाल वरतना पैंदा। दो टाइम जिवें डॉक्टर कोल जाने आ, डॉक्टर आखदा आ लै दवाई, ये दो टाइम खाई, ते दवाई दे नाल नाल परहेज जरूर रखी। तू खट्टा नहीं खाना,
शुगर दे मरीज नूं आखणगे तूं मिठा नहीं खाणा, दिल दे मरीज नूं आखणगे तूं घिओ नहीं खाणा, भारियां चीजां ना खाया कर, डॉक्टर रोकदे ने। जिहड़ा बंदा दवाई ले आवे ते परहेज ना रखे वो ठीक नहीं हो सकता। 100 रुपए की दवाई ले आवे खंघ दी, 5 रुपए दे रेहड़ी तो पकौड़े खा लवे, फिर ते हिसाब किताब बराबर ही हो जाना, फिर ठीक किवें होएगा? साडा हाल इदां दा, असी नाम भी जपी जाने, असी खंड पाठ भी साल पिछों करा लैने, पर परहेज भी कोई नहीं रखते। सवेरे गुरुद्वारे जरूर जाना, शाम नूं ठेके ते भी जरूर जाना। इदां दा अज साडा सुभा बन गया। जे गुरमुखो असी चाहुंदे आ कि साडा भला होवे, साडे मन दे रोग दूर हो जाण, ते सानू सच्चे पातशाह वल्लों दस्से होए परहेज ही रखना पएगा। जो मर्ज दस्सदे ने, मर्ज ने आख्या शराबां तों बचो, सच्चे पातशाह आंदे ने तंबाकू तों बचो, सच्चे पातशाह कहिंदे ने पर नारी पर पुरुष दा संग ना करो। महाराज बार बार जिन्हां गल्लां तों रोकदे ने, जे असीं उन्हां गल्लां नूं अपने जीवन विच लै आईए ते अपने आप कृपा हो जाणी। पर इतिहाल इदां दा, पूछत पथक तह मार्ग ना धारै पग, प्रीतम के देश कैसे वतन कह जाइए। कहिंदे बंदा राह पुछदा रहिंदा, भाई गुरदास जी कहिंदे ने राह पुछदा रहिंदा, तुरदा है नहीं, ते गल्लां नाल किवें ठीक हो जाएगा? तैनूं तुरना पैणा, अपनी मंजिल तक तां पहुंचेगा जे तुरेगा। ते परहेज नहीं रखदे, पूछत है वैद, वैद कोल जांदा है, खात औखद ना संजम से, दवाई संजम नाल परहेज नाल खांदा नहीं। कैसे मिटै रोग, कहिंदे तेरा रोग मिटेगा किवें? कैसे मिटै रोग, सुख सहज समाई है, किवें तेरा शरीर ठीक हो सकदा जे परहेज नहीं रखदा? जे परहेज रखदा नहीं ते भावें जिन्नी मर्जी दवाई खाई जा, जे साडा सच्चे पातशाह वल्लों दसियां होईयां कुरैतां नूं असीं अपने जीवन विचों ना कढ़िया, ते फिर सच्चे पातशाह दे नाम दा फायदा की होएगा? नाम भी जपी जाने, परहेज भी कोई नहीं रखते। परहेज रखना पैना, फिर ठीक होवांगे। ते सतसंग जी, धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह हर एक दे सिर दे उत्ते हथ रखदे ने। चेतक रूपी, चेतक दी ओ जिहड़ी बीमारी सी, उह सारा रोग कट दिता, पर महाराज ने ओ बीमारी उस रोग नूं अपने शरीर उत्ते लै ले। 8 साल की उम्र दे विच धन गुरु हरकृष्ण महाराज सचखंड गए। रोगियां दे रोग कट्टे गज के पढ़ो सारे।

हर हर नाम दियो गुर अवखद उतर गयो सब ताप रहाओ हर गोबिंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार मिटी ब्याद सर्ब सुख होए हर गुण सदा विचार अंगीकार कियो मेरे करतै गुर पूरे की वडियाई अब चल नीम तरी गुर नानक नित नित चढ़ै सुआई गुजरी महला पंजवां कबहू हर प्यो चीत ना लायु धंधा करत बिहानी औदह गुण निद नाम ना गायो रहाओ कौडी कौडी जोरत कपते अनक जुगत कर तायो विसरत प्राब केते दुख गनिय है महा मोहनी खायो।

तुहार मिथ्या भज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आग्या टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण सम्राट श्री धर सरणता की गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सिया।

आराध सर्व सुख कल्याण पावह मितै सगल उपाद रहाउ मात पिता सुत मीत भाई तिस बिना नहीं कोई ईत ऊत जी नाल संगी सर्ब रविया सोए कोट जतन अपाव मिथ्या कस ना आवे काम तरन साधु निर्मला गत होए।

ताको काल नाही जम जो है, बूझह अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजै प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगै,

आवे बिन गुर गत नहीं काई गुरमुख प्राणी नामे राते नामे गत पत पाई भाई रे राम नाम चित लाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ ऐ जी बहुते भीख करे पिठिया को केते उदर भरन कै ताई बिन हर भगत नाही सुख प्राणी बिन गुर गर्भ ना जाई ऐ जी काल सदा सिर ऊपर ठाडे जन्म जन्म वैराई साचै शब्द रत्ते से बाचे सतगुर बूझ बुझाई गुर सरनाई जोहे ना साकै

जो तिस भावे सोई करसी कीर्तना मेटिया जाई। ऐ जी भाग परे गुर सरन तुम्हारी मैं अवरना दूजी पहाई। अब तब एक को एक पकारो।

हम उत्तम नीच ना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग विसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करै प्रभ बख्श ना मेटै नित नित चढ़ै सवाई ऐ जी गुर की दात ना मेटै कोई मेरा ठाकुर आप दिवाई निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात ना पाई ऐ जी सरन परे प्रभ बख्श मलावै बिलम ना अदुआराई आनंद मूल नाथ सिर नाथा सतगुर मेल मलाई ऐ जी सदा दयाल दया कर रवया गुरमत भ्रमण चुकाई पारस भेट कंचन धात होई सत संगत की वडियाई हर जल निर्मल मन इशनानी मज्जन सतगुर पाई पुनरप जन्म नाही जन संगत ज्योति जोत मलाई तू वड पुरख अगम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम अरादितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल बिनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मग्न हितं हिर नाम भगत दिणंग मती गुरवाक शब्द रतं परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहित व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मन सहज विचार सो मन निर्मल जित साके अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर भव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लभ लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन नचाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो मुक्त होवै जो इच्छी सोई फल पाई नाच रे मन गुर कै आगै गुर कै भाणै नाच है ता सुख पाव है अंते जम पौ भागै रहाउ आप नचाए सो भगत कही है अपना प्यार आप लाई आपे गावै आप सुनावै इस मन अंधे को मार्ग पाई अन दिन नाचै सकत निवारै शिव कर नींद न होई शक्ति घर जगत सूता नाचै तापै अवरो गावै मनमुख भगत न होई सुर नर विरत पख करमी नाचे मुन जन ज्ञान बीचारी सिद्ध साधक लिव लागी नाचे जिन गुरमुख बुद्ध बीचारी
खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे जिन लागी हर लिव तुम्हारी जी जंत सबे ही नाचे नाच है खानी चारी जो तुद भाव है ते ही नाच है जिन गुरमुख शब्द लिवला।

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है। अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाई। जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनकस नंदन नारद मुन सेव है। अन दिन जपत रह बनवारी शरणागत प्रहलाद जन आए। तिनकी पैज सुवारी अलख निरंजन एको वर्त एका ज्योत मरारी सब जाचिक तू एको दाता मांग है हाथ पसारी। भगत जना की उत्तम बाणी गाव है अकथ कथा नित न्यारी। सफल जन्म भया तिन केरा आप तरे कुल तारी। मनमुख दुबदा दुरमत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी। संत जना की कथा ना पावे ओए डूबे सन परवारी। निंदक निंदा कर मल धोवे ओह मल पख माया धारी। संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी। एहो परपंच खेल किया सब करतै हर करतै सब कल धारी। हर एको सूत वरतै जोगे अंतर सूत खिंचै एकंकारी। रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस धारी। नानक हर बिन अवर ना मांगो हर रस प्रीत।

है त्यो बोले है स्वामी कुदरत कमन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी गुजरी महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाथ नरहर दीन बंदव पतत पावन देव तै त्रास नाथ कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोबिंद चरण सरन दयाल केसव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार धरनी तर पत राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुध करुणा में चिंत मेत पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाध दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण जाती है रज साध मोह मिथन दुरंत आसा बात ना बेकार रख धर्म भरम बदार मनते उधर हर निरंकार तनाड आड़ पंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक श्री धर पय गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस है रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

0: परमीता सतगुर मिले है जीवत मरे बुझ सच समीता शब्दे हमें खोई है हर मेल मिलीता सब किस जाने करे आप आपे विगसीता।
1: केरबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नू पता ही है, जे नहीं ता ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

0: संसार वास्ते कतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश क्यों वरना को सांझा। ये जितनिया दवाइया दे मेडिकल स्टोर भरे ने गुरमुखो, किसे दवाई उत्ते लिखिया नहीं के सिख टीका लवा सकदा ब्राह्मण ना लवावे, किसे टीके ते नहीं लिखिया पाकिस्तानी लवा सकदा इंडियन ना लवावे, किसे टैबलेट ते नहीं लिखिया ये संत खा सकदा चोर ना खावे। इस तरह गुरु पीरिया ऋषिया मुनिया दा उपदेश, गुरु पीरां दी बाणी, सतगुरु नानक दी बाणी, इनू कोई गावे को सुने कोई करे विचार, को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। आज दी विचार सिर्फ इतने कि कर्म धर्म करो, दान पुन करो, तीर्थां ते जाओ, पार पार उतारा ता होना जे अपने सतगुरु दा हुक्म मन्ना। हुक्म मन्या होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए। जपजी साहब दा सिद्धांत इको सवाल विच है कि किव सचियारा होई है, किव कूड़े त्रुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महात।
1: केलबो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम स्लिप तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

मन भक्त जियो, मन भक्त जियो, मन भक्त जियो, मन भक्त जियो, मन भक्त जियो।

जन्म मरण दुख जाए, हो गए सब तक संबंधी नूर अर्सों पुरुषों चटिया। खुद जिथे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह सिर श्याह जिस पास बहसियां सूही।

ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी पर पूरे अमृत संत चुगहे नहीं दूरे हर रस चोग चुगहे प्रभु पावै सर्वर मह हंस प्राण पत पावै क्या बग बपुड़ा छपुड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए क्या बग बपुड़ा छपुड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए रहा रख रख चरण धरे बिचारी दुबदा छोड़ पै निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस जाके आगुण जान रहे गुर राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मह हंस हंस मह सागर अकथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नारना पुरुष कहों को कैसे त्रिपवन ज्योत रहे लेबलाई सुर नर नाथ सचे शरणाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत बछल पै काटन हारे हमें मार मिले भगत हारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबदा खोवै आप न चीनस ब्रह्म ब्रह्म रोवै कहतो पढ़तो सुनतो एक तीर्ज धर्म धरणी तर टेक जात सत संजम हृदय समाए चौथे पद कौ जे मन पति आए साचे निर्मल मैल न लागै गुर कै शब्द भरम पौ पागै सूरत मूरत आदि अनूप नानक जाचै साच स्वरूप साचे निर्मल मैल न लागै गुर कै शब्द भरम पौ पागै सूरत मूरत आदि अनूप नानक जाचै साच स्वरूप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ जापुर जी साहेब एक ओंकार सतगुरु सतनाम करता पुरुष निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजू सहपन गुर प्रसाद जप आदि सच युग आदि सच है भी सच नानक होशी भी सच सोचै सोच न हो गई मुझे सोची लख बार सोचा चुप न हो गई मुझे लाइरा लिखा चुपया पुतला फरीज बना पुनिया पार ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣ ਕਾ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਸਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਵ ਪੂਰੇ ਸੁਖੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵੜਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਏ ਹੈ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਮ ਕਹਿ ਨਾ

ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंच पावें दरगाह।

एकामाई जुगत व्याई तिन झले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जब किस भावै तिव चलावै जब होवै फुरमान ओह वेखै ओना नजर न आवै बहुता ही बिडाण आदेश स आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो किस पास एका वार कर कर वेख सृजन हार नानक सचे की साची कार आदेश दस आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन झले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जब किस भावै तिव चलावै जब होवै फुरमान ओ वेखै ओ ना नदर न आवै बहुता ही बडाण।

मरण है, जन्म है मरण है, भूत है मरण है, गांज है बांज है, अजूज है जांज है, मीकर फीकर दंद है बंद है, निर्भूज है असूज है, अकाल है अजाल है, अल्लाह है जह है, अनंत है महंत है, अलीक है निरसलीक है, निर्लंब है सांब है, अगम है जम है, भूत है सूत है, अलोक है अशोक है, अकर्म है परम है, जीत है पीत है, वह गाय मान निदान नीक फ्रीक है, कुजंग प्रयात शंभ। नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पावणे, अनंगी अनाथे दरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मन माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो दान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो पद पादे, अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे, परपंगी परमाते समाधि भूते, कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राजराजेश्वरं परम रूपे, नमो योग योगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राजराजेश्वरं परम हृदय, नमो सहस्रपाणे, नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षीय परमीय भोगीय भोगते, नमो योग योगेश्वरं परम जोगते, नमो नित नारायणे गुरु कर्मे, नमो प्रेत प्रेत देव सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाशाह, नमो भोग रूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो संशनाने, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो यंत्र यंत्रंग, नमो इष्टे इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी, अनुपे रूपे समाप्तो निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा अभृद्धकर्ता, अदु ऊर्ध्वर्धंगा गंगूघर्ता, परं परं परमेश्वरं ब्रूजपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अशेदीय भेदीय नाम काम स्वास्थ्यपराजी समाता सुताम तेरा जोर चाचरी शंभ। जले हैं खले हैं पीता वेया, प्रभु आजुआ देसा पेशाए, पुजंग प्रयात शंभ। अगाध्य अबाध्य नंदी स्वरूप है, नमो सर्व मान्य समाधि न धान्य, नमास्तुंग निर्नाथे, नमास्तुंग परमाते, नमास्तुंग गंजे, नमास्तुंग पंजे, नमास्तुवंगा काले, नमास्तुवंगा पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राजराजे, नमो साज साजे, नमो साहे, नमो महामाहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो शोक शोके, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतंग, नमो सर्वपीतंग, नमो सर्वज्ञानंग, नमो परमतानंग, नमो सर्वमंत्रंग, नमो सर्वयंत्रंग, नमो सर्वदृष्टंग, नमो सर्वकृष्टंग, नमो सर्वरंगे सर्वंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तंग प्रसिद्धे, कृपालंग स्वरूपे गोकर्मंग प्रणाशी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी, चरपट छंद तव प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे जल भोगे जल, राजे अकल साजे, अखल धर्मंग लख कर्मंग, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता, सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं भुक्ता सर्वं युक्ता, सर्वं देवं सर्वं पेवं, सर्वं काले सर्वं पाले, रूआल शांत तव प्रसाद, आद रूपन आद मूर्त जोन पुरुष पार, सर्वमान त्रमान देवा पेवा दुधार, सर्व कालक सर्व कालको, सर्व कोपन काल, जत्र तत्र विराजी अब तूतर प्रसाद, नाम ठाव न जात जाकर, रूप रंग न रेख, आदि पुरुष उदार मूर्त जो नाद शेख, देश और न पेश जाकर, रूप रेख न राग, जतर ततर दिशा दिशा विफल्य अनुराग, नाम काम हीन पेखत नामू न जाहि, सर्वमान सर्वत्र मान सैव मान तदाही, एक मूर्त अनेक दर्शन अकीन रूप अनेक, खेल खेल अखिल खेल में अंत कोबर एक, देव पेव न जानी जे बेदर्क तेव, रूप रंग न जात पात सो जानी कह जेव, तात मात न जात जा कर, जन्म मरण बहीन चकर बकर फिर चतर जाक, मानी प्रतीन लोक चौदह के बिखय, जग जापी जह जाप, आद देव अनाद मूर्त थापु सब जय थाप, परम वेद प्राण परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरुष पार, सर्व विश्व रचियो श्रियाम पवगण पंजनहार,
ਕਾਲ ਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਲ ਪੁਰਖਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੁਪਰਮ ਰਹਿਤ ਪੂਤਲ ਕਪੇਸ਼ ਅੰਗ ਰਾਗ ਨ ਰੰਗ ਜੈ ਕਹਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨ ਨਾਮ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤ ਦਾਇਕ ਰਾਮ ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀ ਕਾਨ ਹਸਤ ਇਕ ਪੁਰਖ ਵਧੂਤ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਦਿ ਰੂਪ ਸੂਤ ਅੰਗਹੀਨ ਭੰਗ ਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੁ ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਕਾਇਕ ਸਰਬ ਗੁਪ੍ਰਤ ਪਾਰੁ ਸਰਬਗੰਤਾ ਸਰਬਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਪੇਖ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨ ਜਾਣੀ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ

हरियं करियं निर्नामे अकामे पुजंग पर्यादिशंद चतर जकर करता चतर जकर हरता चतर जकर दाने चतर जकर जाने चतर जकर वरती चतर जकर भरती चतर जकर पाले चतर जकर काले चतर जकर पासे चतर जकर वासे चतर जकर माने आए चतर जकर दाने आए चाच री शंद ना सत्रह न मित्र न परमंग न पितर न करमंग न काय अजन मंगा जाय ना चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दृशा कृषाय भगवती शाम विदव प्रसाद काथ ते क्या सज देशा क्या पज बेसा के अगंज करम है क्या पंज परम है क्या पज लोक है क्या दुर्लोक है कि अब दूत भरना है कि अब भूत करना है

प्रकाशेन अंगं स्वरूपे अपंगं विभूते ब्रह्मासन ब्रह्मासे सर्वसाधे अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते अनंगी अनामे दृपंगी निरकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न दाते न माते न जाते न पाते नृसाग श्री गय मित्री गाय सदैव प्रवाहे जय जाय भगवती चंद प्रसाद के जाहर जूर है के हाजर है जूर है हमेशल सलाम है समा सुल कलाम है के सब दिमाग है के उसम चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी रहन दें के राज करहन दें ग्रीमल कुमार हैं के उसनो जमाल हैं ग्रीमल खराज हैं ग्रीमल निवाज हैं हरी फल सिकन हैं रास लभ कान हैं कलंकन प्रणाश हैं समातुल निवास हैं गंजल गुनी मैं रजाय गृहीम हैं समातुल जवा हैं के

कमाल है कि जो अजमाल है कि अचलन प्रकाश है कि मैं तो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मैं तो बतूत है कि मैं तो बसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलन आनंद है कि मैं तो बंद है मद पार चंद तो प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गर्म दाम अरबर गंज हर नरपर पंज अन गन प्रणाम मुन मन सलाम हर नरिया खांडू भर नरिया मांडू अनपवनाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल सलम दाम अंश जंग आसन पंग उपमा पार गिद दार जल सल मांडू देश विश पांड जल थल महंत देश विश बेअंत अनपवनाशो त्रत कर त्रास आ जान बाह एक सदा ओंकार आदि कथनी अनाद कालखंड ख्याल गुरभर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जगात अज जिन बात अंजन जगात अंजरंज बात अंटुट भंडार अंठट अपार अढ़ीठ धर्म अतठीठ कर्म अण ब्रणनंत दाता महंत हर बोल मना शांत तव प्रसाद करुणालया है अरकालया है कलखंडन है मह मंडन है जगदीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है कृत के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्या है सर्वनाश्या है सर्व

सुमातुल प्रणासी गंगर नाम सुमातुल निवासी मेरे कामंग बभूते सुमातुल स्वरूप कर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बभूते सदा सचदा नंद सतरंग प्रणासी गलिमुलक निंदा सुमातुल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी मैं हरियंग गलियंग गलिम रही मैं जत्र जकर वर्दी जत्र जकर भुगते सुयंभव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंगंग बभूते चतुर्चक्र वर्ती चतुर्चक्र भुगते सुयंभव

0: जागरण बयानी
1: माता के उधर में व्रतपाल करे सो के मन विसारी है मन के विसारी है बड़दाता आज अगर मैं आहार पहुंचावे उसनों के पोन सके जिसनु अपनी लिबलावे अपनी लिवे आपे लाए गुर मुखदा संभाली है कहे नानक बड़दाता सो के मन विसारी है जैसी अग्न उधर महे तैसी बहार माया माया गंधवे को जे ही करता है खेदर चाया जहां तिस पाण तो जमया परवार भला पाया लिव छुड़ के लगी दृष्णा माया अमर बरताया यही माया जित हर विसरै मां मोह पजै पाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी इतनी विच माया पाया हर आप मुलक है मुल न पाया जाई मुल न पाया जाए किसै बिटो रहे लोक मिल लाए ऐसा सतगुरु जी मिलै जिसनों सिर सुन पिया बिचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर बसै मन आई हर आप मुलक है भगत ना के नानका जिन हर पलै पाए हर रास मेरी मन बनजारा हर रास मेरी मन बनजारा सतगुर ते रास जानी हर हर न जप्यो जियो ला घट्यो दिहाड़ी ਇਹ ਧਨ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਨ।

यार तो मैं जो रखी दादी जग में आया अरे आपे माता पे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया तो चलत हुआ चलत नदरी आया कहे नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया जो राखी दादू जग में आया मान चाओ पया प्रभा को सुनिया हर मंगल गाओ सखी रे मंदिर बनिया हर गाओ मंगल ने सखिए सुख दुख न व्यापे गुर चरण लागे जन सुभागे अपना बिर जापे अनहत वाणी को शब्द जानी हर नाम।

लाए सुनो सतवाणी जित सुनी मंद नारिया हो वार सुनो रसमाणी साचा लख बडाणी दा की गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो बहो साचा सुन मैनो पठाए हार जियो गुफा अंदर रख कह वाजा पवन मजाया बजाया वाजा पवन नौ दुवारी प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारा लाए पावनी एक ना दसवा द्वार दिखाया तह नेक रूप नाव नाव निध

नच नच हसे चले से रोए कुद न जाई सिद न होए नचण कुदण मन का चाओ नानक जिन मन पाओ।

मिट्टी मुसलमान की पेड़ पै कुमार कर पंडे इतना किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे ग्यार नानक जिन करते कारण किया हो जाने सरकार और

0: देव की संतोखे दिली सचो साहित्य आया कोनी मंदे पैर रखो कर सुधर्म कमाया दुनिया तोड़े बंदना अनपानी थोड़ा खाया
1: तो बख्शी थी अगला
0: जिसे मैं चले सुनाया।

पौड़ी सतगुरु विट्ठू वारिया जिन मिलिया कस मुझमा लिया जिन कर्म देश ज्ञान अंजन लिया इन नेत्री जस निहार लिया खत्म छोड़ दूजे लिखे डूबे सेवन जा रिया सतगुरु है बोईता विले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया।

उपाय हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चहु कुंट जाते हर सिमरन तारी सब करना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की यो सगल अकारा हर सिमरन में है आप निरंकारा कर कृपा

अमृत मुखियान जोग अभ्यास क्रम परम क्रिया सरल त्याग बनव दे श्रेया अनेक प्रकार की ये बहुजतना पूर्ण दान हो में बहुरत्ना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जप पिया एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव माँ उदास तपी सर थीव अग्न माहे होमत परान कनक अश्व है वह भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमक निमक कर श्री कटावै तौ पी हो मैं महल न जावै हर के नाम समसर कस नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करै दिन अर रात मन की मैल न तनते जात इस दही को बहु साधना करै मन ते कभू न भिक्षा टरै

काल मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया तेक हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनहे मिथ्या हस्त पर दर्भ कौ ही रहे मिथ्या नेत्र पेखत पर प्रिय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कौ तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर पुकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पये सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी साखत की आर जा साच बिना कह हो सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन बिन रहन बिरथा बिहाए मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम जो कृपन के निरार्थ दाम तन तन तेजन जेह कट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत।

मर, जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख करै संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण प्राता। करो बेनती पार गुण सब जाने, अपना किया आप है माने। आप है आप, आप करतने बेरा, किसै दूर जनाव किसै बुझावत नेरा। उपाव स्यानप सगल थे रहत, सब कस जाने आत्म की रहत। जिस पावे पिछले लड़ लाए, थान खनंतर रया समाए। सो सेव

अष्टपदी जय प्रसाद सती अमृत खाए तिथा गुरु कौरख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमृत परम गत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसह त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख वसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यमन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसह त्याग कत अवर लुभावे जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर तांका जस गावी जय जय प्रसाद तुझ सब को मानै मुक्ता को जस रसन बखानै जय प्रसाद।

अमृत रस सुनचा सात संग होए सब की रेन सात के संग मनोहर बैन सात के संग नकत हुतावे सात संग अस्तित मन पावे सात के संग माया से भिन्न सात संग नानक प्रभु सुप्रसन्न।

प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सोग कहावै। कैसा हर्ष तैसा उस सोग सदानंद तै नहीं वियोग। कैसा स्वर्ण तैसी उस माटी कैसा अमृत तैसी।

सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत तारै नानक जिस जिस सावै तिस तिस निस्तारै कई कोट राजस्तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमृत अर्थास्त कई कोट किए रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जाख किन्नर पिताच कई कोट भूत प्रेत शुकर मृगाच सब ते नेरे सबू ते दूर नानक आप अलिप।

जगदीश जियो पिंड सब किसकी रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, अपनी बणत आप बनाई, नानक जी वै देश बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करण कराम सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस भावे सोई पुन थियो, कभू ऊंच नीच में बसै, कभू सोग हर खरंग हसै, कभू निंद चिन्ह व्यवहार, कभू ऊब आकाश प्यार, कभू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कभू निरत करै बो भांत, कभू सोए रहे दिन रात, कभू महा क्रोध विकराल, कभू सर्व की हो तरवाल, कभू होए बह बड़ राजा, कभू ते खारी नीच का साजा, कभू अप कीर्त में आवे, कभू भला भला कहावे, ज्यो प्रभ राखै तिन्हि रहै, गुरु प्रसाद नानक सच कहै, कभू होए पंडित करे व्याख्यान, कभू मौन धारी लावे ध्यान, कभू तट तीर्थ स्नान, कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमै परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावै, ज्यो प्रभ भावै तिवें नचावै।

सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुरु प्रसाद नानक नौ छूटै सहस खटे लख कौठ तावै तृप्त नावै माया पाछै पावै अनक भोग भिख्या के करै नह बतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुखन मनोरथ बृथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसै प्राप्त होए।

करने हार कौतक करे रंग आपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने बख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अति सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी घट घट सुनी श्रवण।

अष्ट पदी संत कै दुखन आरजा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक मह पाए। संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन। संत के हते कौ रखै न कोए, संत कै दुखन थान प्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पीतरै। संत के दुखन के मुख पवै, संतन कै दुखन काग जून लवै। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब को छलै। संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीचाए। संत दोखी का थाव को नाहे, नानक संत पावै था ओए पी गत पाहे। संत का निंदक महा अत ताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा।

मछली तड़फुड़ाए संत दुखी भूखा नहीं राजै ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै संत दुखी छुटै केला ज्यों बुआड़ तिलखेत माहे दुहेला संत दुखी धर्म ते रहत संत दुखी सद मिथ्या कहत कीर्त निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस भावै सोई थिया संत दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत दुखी कौ दरगह मिलै सजाए संत दुखी सदा सहकाई है संत दुखी न मरै ना जीवाई है संत दुखी की पूजै ना आस्था संत दुखी उठ चलै निराशा संत कै दुख न त्रिष्टै कोए जैसा भावै तैसा

है भगवान जिसका दिए रह अघाए बहुर न तृष्णा लागे आए मारे राख को आप मानुक कह कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघ्न न लागे कोए उसत मन कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत।

सहचितार जो कछ करै सोई सुख मान भूला काहे त्रै अजान कौन बस आई तेरा संग लपट रहे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पत सेती कर जाहे जिस वखर कौ लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तद

मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभचीत भगत भगत सुनिए तिह लोए जा कह हृदय सो होए सच करनी सचता की रहत सत हृदय सत मुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वरत साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किछ त्रह गुण के प्रभ भिन्न तिसै बुझाए नानका जिस होवै सुप्रसन्न अष्टपदि अविनाशी प्रभ मन मह राख मन सुखी तू प्रीत त्याग तिसते परै नाहीं किछ कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे दीना आपे दाना गैर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन इहो अनराहो मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरण जाका ने त्रिपोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सत जाकै सर्व थोक सुनिए करता कै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपी सिरग्रस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगतें सुख पाया नानक तिस पुरख का किनै अंत न पाया जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान गिन दे जनदास नाम ते आवे से गुण में जाको।

रूप सत जाता सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाति बाणी सत पुरुष सब माय समाणी सत कर्म जाति रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत सेजन जा के हृदय प्रवेश सत नृत बूझे जे कोई नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टि सो करण है हार अवर न बूझ प्रत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया विस्मन विस्म भय विस्माद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रहे गुर कै वचन पदार्थ लहे कोई दाते दुख काट नहार जा कै संग करै संसार जन का सेवक सोवड़ भागी जन कै संग।

पी गए अमरस होए। उस पुरख का ना ही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मै राखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक परम मोह दुख तहते नासे। तपत माए ठांड वरताई, आनंद भया दुख न ठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पौ चूका निरपौ होए बसे, सकल ब्याज मन के खैन से। जिसका सा

निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कलाकार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर दिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रगाट साध।

मूर्ख मना। सुत मीत कुटुंब अर्बनता इनते कहो तुम कौन सनाथा। राज रंग माया विस्तार इनते कहो कौन छुटकार। अस हस्ती रथ असुवारी झूठा डंफ झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझना बिगाना नाम विस्तार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल रखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिक जाहे। आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कह।

तब हर शोभ कहो किस है व्याप्त, जब अपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करना हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुरुप कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए, तब शिव सुगत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत तरह, तब कौन निडर कौन कत डरे। आपन चलते आप करने हार।

अष्टपदी। आप कथै आप सुनने हार, आपै एक आप विस्तार। जा तिस भावै तां सृष्टि उपाए, अपने भाणे लै समाए। तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, अपन सूत सब जगत परोए। जा कहो प्रभु जीव आप बुझाए, सत नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्टि का जेता। जीव जंत्र सब

न पहुँचन हार। सिर ऊपर ठंडा गुरसूरा, नानक साके कार्ज पूरा। मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पेखत उदृत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरुष प्रधान। जिस मन बसै सो होत निहाल, ताके निकट नावत काल। अमर पय अमर

आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै तां करे विस्तार तिस भावै तां एकंकार अनक कला लखी नहि जाए जिस भावै तिस लै मिलाए कवन निकट कवन कहिए।

प्रभु की उसत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोहत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए

मन इच्छा दान करन सर्वतर आशा पूर्ण है। खंडन काल कलेश प्रभ सिमर नानक न दूर नै।

दीने रस भोग ग्रह मंदर रस अस दिए रच भले संजोग सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग

साध संगत विच बैठ के हरी दे गुण गा ते तेरे सारे रोग बिणस जाणगे। ते वाकई जे सतगुरु कृपा करे ते साईं दी बख्शिश नाल ही बिणस सकदे ने। भाई गुरदास होरां नूं किसे गुरमुख ने एक सवाल किया, वैसे तो सतगुरु तो कुर्बान जाइए हजूर अपने लिए तो शब्द वरदे ने, जो पढ़ने ना कि मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई बिल पकड़ा चातरत की न्याई। ते कहिंदे ने दाता जे एक खिन ना ना तू चेते आवे, एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता, तेरा एक घड़ी का विछोड़ा मेरे लिए असह वे। देखो साढ़े लिए किन्नी कु खुल दिती साहब दे बचन आप पढ़ने, एक घड़ी दिल समोको बहुत प्यारे, मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिल समोको कबू ना बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोको तेरा मिलावे। के तेरे विछोड़े विच एक घड़ी भी इंज लगता है जिवें करोड़ा साल ने। ते जदो सिख गुरु कोल गया ना जेड़ी कालना गुरु नानक साहब काल के सानू बख्श गए ने, गुरसिखो मान करियो इस साईं दा लड़ पकड़िया। जे तेरे कुल सारा दिन वेल नहीं एक दो घड़िया किसी संगत विच बह जाए ना ते तेरा इन्ने विच भी भला हो जाएगा। हुण तको आप कहिंदे ने मैं एक घड़ी भी नहीं रह सकदा, ते सानू कहिंदे ने कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि खून आद भगतन सेती गोश्त जो कीने सो लाभ। कह लगे अद्धी तो अद्धी घड़ी। हुण एक सवाल पैदा हो गया भी अद्धी घड़ी भी संगत विच बैठिया भला हो सकदा, आने मत्था टेकने कोई पांच मिनट कोई दस मिनट हुण चौबी घंटे काम करते रह की एक घंटा संगत कीतिया भला हो सकदा। ते इहदा उत्तर भाई गुरदास ने दिता है, कहन लगे गुरमुखा मैं तेन तेन उदाहरण देना ते नाल ही मैं समाप्ति करांगा कि जे किते तू संगत विच जुड़ के साईं दा दो चार घड़ियां शुक्र कर जाए ते उस घड़ी नाल भी तेरा पार उतार आई। उन्हां पुछया जी दसो, ते भाई साहब कहिंदे ने पुराने समय अज भी तक ने जदो कोई दरिया पार करदा है ते लोक बेड़ी ते बैठ के कश्ती ते बैठ के दरिया पार करना नाम विच बैठ के, हुण उहदे ते भार भी लदे आ दाने भी लोक लादे ने आप भी बहिंदे ने कई थावां ते दरियावां ते इस तरह के बहुत सारा समान घर दा विच लदे आ ते जदों बेड़ी मला तोरदा ते बेड़ी सारी दी सारी पानी विच डुब्बी ते सिर्फ दो उंगलां जिहड़ा बेड़ी दा किनारा है ना उह पानी तो उच्चा है। भाई साहब दी दलील दा कोई जवाब ही नहीं, सारी बेड़ी पानी विच डुब्बी है ते दो उंगला बेड़ी दा किनारा पानी तो बाहर है। ते वेखण वाला कहेगा सारी बेड़ी पानी विच ते थोड़ा जिहा किनारा उच्चे दिसदा डुब्बांगे ते नहीं। ते मला कहिंदा घबरा ना भावे सारी विच डुब्बी रहे आ बस आ दो उंगला जिहड़ा पानी तो उत्ते दिसदी पई है ना बस इहनी सानू पार करदे ने। भाई साहब कहिंदे ने जे सारी बेड़ी पानी विच डुब्बी है ते दो उंगला पा पा बाहर होवे ते पार लग सकदी है, तू चौबी घंटे ग्रिस दे धंधियां विच डुब्बा है, जे इन्हां विच दो चार घड़ियां किते टेक के संगत कर लै ते यकीन जानी बेड़ी दी तरह पार तू भी हो जाएगा। भाई साहब ने दूजा प्रमाण दिता, कहन लगे कई सज्जन ऐसे ने जेड़े अठा पैरां बज बाद प्रशादा छकदे ने। कहन लगे अठा पैरां पिछो रसोई विच आया ते खाना खांदिया प्रशादा छकदिया भोजन छकदिया सिर्फ मिनट लगे ने, सत के अठ दस मिनट लगे। हुण चौबी घंटे शरीर ने चलना है, दस मिनट केवल रसोई विच बैठ के जे रोटी खाए ते चौबी घंटे का सहारा मिल जाता है। ते जे सजना रोटी खाया दस मिनट लाया ते शरीर नू सारा दिन ते रात आसरा मिलता है, तू चौबी घंटियां विच दो घड़ियां किते गुरु दे चरणा विच टिके ते तेनू अठे पैर अंदर दा टिका मिल जाएगा। भाई साहब ने तीजा प्रमाण दिता, कहन लगे गुरमुखा देख उस मालिक दी मेहर, जदों कोई भिखारी दुखी किसे राजे ते दरबार भी जांदा है ना ते ओनू झुकदियां मिंट भी नहीं लगदा, बड़ी जल्दी अद्धे मिंट चो मत्था टेक दिंदा है ते बादशाह हो जाए खुश, कहिंदा इहदे इन्ने झुकन नाल तेनू इन्नी जगीर बख्शी। कहन लगे तू रोज भावना नाल आउंदा है, मत्था टेकदियां थोड़ा समा लगदा ही पर अंदर बना के आवी, हो सकदा है

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

प्रोटेजन भगत नामदेव जी अकाल पुरख अगे विनय कर रहे हैं अते सानू अरदास की विधि भी दर्शाते हैं। आप जी दे शुभ बचन हैं, हे बीठे पिता, हे गोविंद, मैनू संसार समुंदर विचों पार

हे केशव, हे केसा वाले प्रभु, मेरे उत्ते दया कर, मेनू गुरु मिला ते इस समुंदर विचों पार लंघा।

तेरा नाम देव हे बीठा पाव हे प्रभु बेंती करदा है। समुंदर विच ठल्ला पै रहियां हन, मेरी बेड़ी चखड़ दे मुंह आ पई है, ते मैं ना ही करना जानता हां। मैनू अपनी बांह फड़ा दाता, बांह फड़ा।

इस गल तो कोई भी मुनकर नहीं कि आपां सारियां ने इस दुनिया दी यात्रा मां दी कुख तो ही शुरू कीती है। ता फिर मां नूं एक खास दिन क्यों याद कीता जांदा है? मां दा दिन मनाउण दा पिछोकड़ इतिहास मुताबिक ग्रीक विच देवी दी पूजा तो शुरू हुंदा है। इस देवी दा नां सी रिया।

गुरु रामदास साहिब जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 164 उपर सुशोभित बचना राही इस मां दे रिश्ते नूं इस तरह फरमांदे हन, माता प्रीत करे पुत खाए।

मत्ती देवी देवर जेष्ठ तन सो ग्रह जित प्रगटी आए जन नानक सुखे सुख विहाय। भाव इस्त्री एक भगती रूप दया निम्रता अते लज्जा आदिक बत्ती सोने लक्षणा वाली है। सदा थिर परमात्मा का नाम इसकी संतान है, पुत्र हन। ये इस्त्री आग्या विच तुरन वाली है, सच्ची है, सोने रूप वाली है। जीवकंत खसम दी हरेक इच्छा ए पूरी कर दी है। दराणी जिठाणी आशा तृष्णा नू हर तरह संतोख देंदी है। ते देवर जेठ दोहां नू मत देन जोगी है।

गुरु नानक साहिब जी ने बखूबी नाल फरमाया है कि हे सतसंग भैनो ते हे सहेलियो, आओ प्यार नाल सतसंग विच इकठियां होइए, सतसंग विच मिल के उस खसम प्रभु दियां गल्लां करिए जो सारियां ताकतां वाला है। हे सहेलियो, ओ सदा थिर मालक विच सारे गुण ही गुण हन, उस तों बिछड़ के ही सारे औगुण साडे विच आ जांदे हन।

0: बीबी भानी जी दी पिता श्रद्धा प्रेम ते सेवा दी मिसाल साडे सामने है। दुनिया दे किसे भी धर्म जां समाज विच इन्ना मान इस्त्री नूं प्राप्त नहीं जितना सिख धर्म विच दित्ता गया है।
1: बीबी भानी जी नूं जो मान प्राप्त है ओह निरा गुर पुत्री गुर पत्नी गुर जननी करके ही नहीं सगों इसका कारण है कि उस सच्ची सुची औरत सी जिस कारण सत्कार वजो हर मस्तक चुक जांदा है। भाव भगती दा रूप सन बीबी भानी जी। पिता जी दी आज्ञा अनुसार हर काम करदे। गुरु पिता जी आम तौर ते एह शब्द दृढ़ करांदे। ए जगत ममता मुआ जीवन की बिदनाहे गुर के भाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे।
0: पुत्री जीरो नू सिख्या ही ऐसी दित्ती सी कि ओ लाजली बच्ची हर वक्त फुल्लां वांग खुशबू ही बंडदी रही। विदाईगी समय मद मोदरी जी ने कहा पुत्री सदा धर्म में रहो।
1: सुन पुत्री प्राणम ते प्यारी जिस ते दैस किते सुखकारी कुल की बात चित में तरनी खोटी संगत नहीं सुकरनी। प्राते उठकर मजन करयो गरवाणी को मुक्ति रहो। पुना और व्यवहार सोई भले संभालो निको सोई मोतिग उपालम नह आवे ऐसी पांत सर्व सुख पावे।

तेरा ओ बचन तेरी ओ बख्शिश अटल है, कोई मेट नहीं सकता। तेरी बख्त ना मेटे कोई, सतगुर का दिलासा। अमृत कर्मे अमृत धर्मे, धर्म तीन अर्थ होंगे प्यारी साथ संगत। एक धर्म का मतलब है तेरा फर्ज तेरी ड्यूटी, एक धर्म का अर्थ है न्याय जस्टिस, एक धर्म का अर्थ है राइटस एक्शन या नियम सिद्धांत। धर्म के यह तिने अर्थ गुरुदेव ने धर्म खंड की पौड़ी च ले ने, प्यार नाल आखो सतना। धर्म खंड की पौड़ी जो पांच खंड जपजी साहब आते हैं, वो वक्रे लोगों का जिक्र नहीं करे, गुरुदेव की वक्री को दुनिया है। वो धर्मी मनुख के जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आदियां ने, जो बदलाव आते हैं, उन्हें चेंजिज की फाइव स्टेजिज ने धर्म पांच खंड। पहला खंड गुरुदेव ने रखे धर्म खंड। जब तक इंसान को अपना फर्ज अपनी ड्यूटी और ठीक की है गलत की है यदि विचार नहीं आती, तब तक इंसान जीवन च कामयाब नहीं हो सकता। प्यार ना लग खुश करना परमात्मा तक भी उही पहुंच सकता है जिहड़ा इस संसार विच अपने फर्जा नूं ठीक तरह निभा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो बार बार मैं जिक्र किया ना कि मैरिज से एक सेमिनार करना है, खाली मैरिड लोगों वास्ते नहीं है, मत समझना कि सिर्फ मैरिड लोगों वास्ते, उन्हां वास्ते भी है जिन्होंने अगे ग्रस्त जीवन च कदम रखना है, उन्हां वास्ते भी है जिन्हों के नवे नवे ब्याह होए ने, तो उन्हां वास्ते भी है जिन्हों के ब्याह मनु अज भी 20 साल भी हो चुके हैं। प्यार नाल आखो सतना, क्योंकि फर्ज की पहचान बड़ी जरूरी। धर्म का पहला स्टेप ही यह है कि क्या तूनू अपना फर्ज पता है, तेरा फर्ज की है। लावां की पहली पंक्ति विच ही गुरदेव सानू धर्म दृढ़ करांदे ने, साडा फर्ज हर पहलड़ी लाव प्रवृत्ति करम दृढ़ाया बलराम जियो। प्रवृत्ति समझ लो, दो तरह का जीवन है, एक निवृत्ति जीवन एक प्रवृत्ति जीवन। निवृत्ति भाव सन्यासी लोग, दोज हु हैव रिनाउंस द वर्ल्ड, दे डोंट हैव एनी फैमिली, दे डोंट लिव एनी मोर इन फैमिली, वो उन्होंने कहते निवृत्ति जीवन। प्रवृत्ति जीवन गृहस्थी का जीवन, कहंदे अज तेरा विआह होने लगा, पहली लाम लाम शब्द अर्थ ने टीचिंग। एक है लाम का अर्थ परिक्रमा, लाम का दूजा अर्थ जो बनता है वह है टीचिंग, गुरु का उपदेश। चार लावों के पाठ गुरु की उपदेश दे रहे हैं कि पहलड़ी लाव अज तू जीवन विच ग्रस्त जीवन विच कदम रखन लगा है, पहले अपने फर्ज नूं समझ लै। और सब तो पहला फर्ज की है इंसान का, बाहें जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजे बाहें न छोड़िए। हुण सिर भावें चला जाए, अपने साथी दी बाह नहीं छड़नी। जे साथी नहीं नाल, इक पहिए नाल ते गड्डी नहीं चलदी। प्यारी साथ संगत, प्यार नाल आखो सतना। प्रवृत्ति कर्म दड़ाया बड़ा, पहला एक फर्ज समझ तेरी ड्यूटी की है। दूजा फिर उस धर्मखंड की पौड़ी गुरुदेव कहते ने, न्या परमेश्वर का न्यायी, कर्मी कर्मी होए भी चार, सच्चा आप सच्चा दरबार। सच्चे दे दरबार से सच्चा इंसान, तकड़ी पूरी तुलनी है, उत्थे चलाकियां नहीं चलनियां, होशियारियां नहीं चलनियां। अगे सब संजान है लैसी बस समाज के पंक्ति दे पौड़ी दे खीरी च आंदा है, कच पकाई उत्थे पाई। कच्चा कौन है पक्का कौन है दी पछाण उत्थे जाके होएगी। इत्थे संसार में तो परमा लांगे, चिट्टे पाले भगवे पाले काले पाले टिक्के ला ले, कोई भी ढंग कर लिया, संसार कन्विंस हो गया बड़ा विद्वान है बड़ा ज्ञानी है, पर उत्थे जाके पता लगना है। ऐसा ना होवे अंतर अगन बाहर तन स्वा, गल पाथर कैसे तरे था, बाहर पेख अंतर मल माया, छपत नाही किछ करे छपाया। पढ़ो प्यार ना जानन हार, प्रभु परवीन बाहर फेक न कहूंगी। तिने चीजा गुरुदेव ने धर्मखंड की पहली पौड़ी दर्शाई हैं। कल किसी वीर ने कहा कि वीर जी पांच खंडा के विचार, मैं क्या फिर एक 15 दिन का होर प्रोग्राम चाहिए, पांच खंड के विचार पे

0: मैं प्रीतम के देश का जाएगा मैं चौथे पारी जाएगा बुलाओ करके वाहेगुरु जी का संस्था वाहेगुरु जी
1: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम स्लिप तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नू पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.